Disconnect правда.

Shut up.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: Padrinos de Tequila. Mandar y Murcia. Parta quiero a mí. Febrisantuara. Si va a caer. Artata ab. Atomai.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाने गए, क्या देखने गए कि बाप दादा ने स्वमानों की बहुत बड़ी माला दी। अगर एक एक स्वमान में स्थित होके उस स्थिति में बैठो चलो तो स्वमान कहती जाओ और माला घुमाते जाओ तो बहुत मजा आएगा। स्वमान की लिस्ट रखी है लेकिन एक एक स्वमान कितना बड़ा है और किसने दिया है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक स्वमानों की लिस्ट दी, उसको यूज करो क्योंकि और कोई अथॉरिटी नहीं जो इस स्वमान को आपके कम कर सके और किसी को भी इतने स्वमानों की माला नहीं मिली। तो बाप दादा ने देखा सत्ययुग में तो राजभाग मिलेगा लेकिन ये स्वमानों की माला संगम युग की देन। बाप दादा जब भी बच्चों को देखते हैं तो हर एक बच्चों के स्वमान के स्थिति से देखते हैं। वाह बच्चा वाह, तो स्वमान के अथॉरिटी में रहो। कभी कौन सा स्वमान सामने रखो, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो और चेक करो तो आज अमृत वेले जो विशेष स्वमान बुद्धि में रखा उस स्वमान खजाना है ना, इसको यूज किया क्योंकि खजाना भरने का साधन है। जितना खजाने को कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता है। तो आज बाप दादा देख रहे थे कौन कौन बच्चा है किसके पास स्वमान की स्मृति की माला बड़ी थी किसके पास छोटी। जहां स्वमान होगा वहां देवान खत्म हो जाता। तो आज बाप दादा ने चक्कर लगाया और जैसे स्वमान का खजाना है ऐसे एक एक शक्ति एक एक गुण इस्तेमाल करो, उसको कार्य में लगाओ तो ये जो प्रॉब्लम होती है माया आ गई। माया आ नहीं जाती लेकिन माया ने बाप को सुना है कि मेरे को आह्वान करते है तब जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती। कोई भी हल्का संकल्प करते है माना माया को आह्वान किया शक्तियों को छोड़ता है तो माया को उस अपना चलते फिरते भी चार्ट देखना, चेक करना, चेक करेंगे तो चेंज करेंगे ना, चेक ही नहीं करेंगे

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई भी बात तो समा देना अंदर मन में, बाप दादा को देख करके समा देना। एक शांत शक्ति, दूसरी समाने की शक्ति, अगर ये दोनों विशेष शक्तियां आप में है तो पास इसको इमर्ज रखना। शांत शक्ति को भी और समाने की शक्ति को भी, ऐसे नहीं समाना जो बीमार हो जाओ, ऐसे नहीं। कहीं अंदर समाने की कोशिश करती है ना तो बीमार हो जाती है, दिमाग खराब हो जाते हैं। ऐसे नहीं समाना, समाने की शक्ति।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।
4: रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना, यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी, बाबा बाबा कहती। दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: तो आप सबको पता है जगदम्बा माँ का एक सदा धारणा का सलोकन रहा है, याद है? ये धारणा सब कर ले कि हमें बाप दादा चला रहा, उसके हुक्म से हर कदम चला रहे। अगर ये समझ
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? नहीं देंगे। बहुत दुख देवे तो बहुत गाली देवे, बहुत इंसल्ट करे, थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं?
4: अनादि काल, आदि काल मध्य
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आगे के लिए अब दीवार पुरशारत कर, आगे से भी आगे जाने का दृढ़ संकल्प करो। सफलता की चाबी तो बाप दादा जो भी आज बचे आए हैं वो लोगों विशेष दृढ़ता की चाबी की। So

दीपक बन जलते जाएंगे, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन। आपके स्नेह और पालना को शत शत नमन, शत शत नमन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आप भी फ्रिश्ता ड्रेस जैसे बिना बिना ड्रेस बदली करते हो ना, वैसे

0: शक्तियों के कभी गुणों की रख डाल रहे फरिश्ता ड्रेस पे, फरिश्ता बन के 5-10 मिनट अनुभव करो, फिर वस्त्र बदली कर दो। कर्म योगी है ना, तो ये दिन में जब भी टाइम मिले फरिश्ते की ड्रेस पहन लो और पाप द्वारा ये रंग लग रहे हैं, ये अनुभव अभी से प्रैक्टिस करेंगे ना फरिश्ता ड्रेस की, तो ड्रेस पहनने से नशा चलेगा और मदद मिलेगी फरिश्ता बनने में। तो होली की ये सौगात बाप दादा चारों ओर के बच्चों को दे रहे हैं। बोलना नहीं, फरिश्ता ड्रेस सौगात में दे रहे हैं, होली की सौगात। तो बीच बीच में ये अभ्यास करना, सहज है ना, ड्रेस बदलना तो आता है ना, जैसे ये ड्रेस बदलते हो ना, रोज बदलते हो ना, तो फरिश्ता ड्रेस भी बदल के देखो कितनी सुंदर, कितनी चमकती हुई। सुना ये ड्रिल बोलना, वस्त्र बदली करना, दिन में जितना वार फरिश्ता ड्रेस में बैठ सको, चाहे 3 मिनट बैठो, लेकिन बैठो जरूर, बदली करो जरूर, अभी से संस्कार डालो फरिश्ता बनने के बिना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Sí.

विश्व में

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मंगला से तो सफलता है, क्यों नहीं हो सकता? आकर तो समय आएगा जो सब साधन आपके तरफ से यूज हो, ऑफर करेंगे आप, ऑफर करेंगे कुछ तो, कुछ तो मदद लो। अभी आप लोगों को कहना पड़ता है सहयोगी बनो, फिर वो कहेंगे हमारी को सहयोगी बनाओ। सिर्फ ये बात बाकी रखना, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता, फिर देखो आपका काम कितना चल। परछाई के समान वो आप ही पीछे है, बस रब आपके अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ। एवानिटी बन जाओ तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी है बस। अच्छा स्वाचा करने है और करें।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कोई भी प्रमाण, चाहे सरेंडर है, चाहे सेवादारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा।
3: संकल्प में नहीं तो वृत्ति। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Zanuki.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: Topin nimet pane viihen. Onoko aatskal kevayu mandal parma. Suyam to santusht reh nahi. Lekin santusht karna bhi. संतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं हो क्योंकि आजकल संतुष्टता सबको चाहिए लेकिन हिम्मत नहीं है इसलिए बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसा परवरिश हो के कर लेती है लेकिन उन्हों को भी कुछ सिक्किया कुछ किमिया कुछ उसकी आवश्यकता है और देखा जाता है कि वायुमंडल में मेजॉरिटी को बैलेंस रखना नहीं आता से सिक्या भी हो और फिर साथ साथ उनको हिम्मत भी दो सिर्फ सिक्या से अभी सभी शिक्षक बन गए इसलिए शिक्षा के साथ हिम्मत और स्नेह दिल का बाहर का नहीं लेकिन दिल सने दोनों का बैलेंस रख करके देना और ऐसे प्लान बनाओ जो चारों ओर कोई ना कोई ऐसा प्लान चलता रहे जैसे समय पर समय पट्टियाँ चलाते हैं ना वो तो चलाते ही हूँ लेकिन छोटा मोटा प्रोग्राम ऐसे विधि निकालो जिससे चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बन चाहे ना है लेकिन हिम्मत कम है तो आपस में मिलके कोई ना मास के लिए ऐसा वर्क निकालो जो सभी बिजी हो जाए उसमें रिजल्ट आती रहे ton que ho fa se n'esse. Se jo te na parenga. Jo que se me divertasse se me para. Essa qui plen bano coi na coi varc entrest ca ne calque sav copisira cosme
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
0: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कम से कम बाप दादा फिर भी मार्जिन देते कि इन 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है और अगले सीजन में काम दिया था वो तो भूल गए होंगे। कम से साधन के पास इस मरने में दुख नहीं होता, ये मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना, इसीलिए इस मरने में मजा है, दुख नहीं है, सुख है। कोई बहाना नहीं करना, ये हो गया ना इसीलिए हो गया, बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहानेबाजी करेंगे क्या? करेंगे नहीं करेंगे ना। और ठीक कला की बाजी करना, और कोई बाजी नहीं, कृति कला की बाजी, बहाने बाजी, कमजोरी की बाजी, ये सब समाप्त। और ठीक कला की बाजी, ठीक है ना? सबके चेहरे तो गिर गए जब मास के बाद मिलने आएंगे तो कैसे चेहरे होंगे? तब भी फोटो निकालेंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की ना, तो विघ्न कितने आए और आपको कुछ हुआ तो बाप दादा चतुर छाया बनाता, कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, सारी दुनिया मुखी देता है, गुरु लोग सब

चंद्रछाया रहीना रहीना कोई नुकसान हुआ दुनिया वाले हंगामे में डर करके पाकिस्तान हुआ तो क्या हुआ सब भाग गए और आपका टेनिस कोर्ट भर गया समाज भर गया ना सभी डर के मारे जो इस लगती थी ना वो छोड़े कैसे प्यार होता है ना उसे तो जो सिंधी लोग एंटी थे आपने जो उस समय गाली भी देते थे और सामान भी दिया जो बढ़िया बढ़िया चीज थी ना वो हाथ जोड़ करके देखे गए तो आप यूज करो और दुनिया वालों के लिए 5 रुपए में सारा बैल गाड़ी सब्जियों की थी 5 रुपए में सब्जियां कितने मजे से सब्जियां

0: noi. Chatre Jaya Pan. Kitna safety se stop na ka kariya kiya.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई भी बात आवे, दीपक जगे हुए दीपक के सामने

0: करो, देखने में आवे साकार साधारण स्वरूप गए मुझे, जैसे बाप दादा के सामने आते हो तो बाप दादा को जैसा समय उस रूप में देते, ऐसे आप सभी भी ऐसे दिखाई देंगे। साधारण नहीं दिखाई देंगे, साधारण रूप में, देवता रूप में या देवी के रूप में दिखाई। प्रैक्टिकल बस ना आती है, लेकिन सभी ऐसे स्टेज में पहुंची जाए।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जो भी जितने भी आपके सेवा साथी ऐसे कोई कार्य

0: tan picarrero. Liken. थोड़ा प्रियतन को बराम.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

people.

बच्चों को याद करते हैं, ऐसे नहीं है। कि बच्चे भूल गए हैं, नहीं, एक एक बच्चा

Berlin number 1.

Cyborg. Milan. Hotel. Papi, coś po ciebie.

अभी आगे के लिए। आवाज फैलाने का कोई नया नया प्रोग्राम बनाओ। Oh, no.

ASMR.

0: conozco al Pau Carrer, al Pau Dada Picuche, que afecta jode.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: चारों ओर की शुभ संग

Donnerlager.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग ऐसे सरकमस्टांस आने हैं जो का दूर भी बैठे हो सकेंगे, टच होगा, ये करना है ये नहीं करना है, इसीलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है तो वर्तमान समय

叫，杰西叫，菲西，曼尔波蒂戈，控制可以。इसीलिए कहावत है मन जीते जगत जीत, जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां

समय ए मर जो ऐसे नहीं योग के समय अनुभव होता है लेकिन कर्म के समय व्यवहार के समय

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को

परिवार पर शरद की निशानियां बाप दादा ने पहले भी सुनाई है। दीवार पर शरद Oh, man.

0: yo sé cara dos rinishanie divar por sharatki sada nirman kaje
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Mistet.

0: decían por mí. Por favor, hártenme. Somé, pero somé.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा की रोहानी ड्रिल, याद है ना? Sick.

अपार संसार दूसरा न कोई, इससे एकाग्र सिम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस वर्ष की ये लास्ट मीटिंग है, लेकिन दूसरी

Cosa da

say. Fierat sangkalapo. Say krodo. Chota chota krodo bhi. Suyam ko aur astan ko tang karta hai. Jo bhi kami ho, usko samapat karke pasand पसंद है तो दो दो हाथ उठाओ. वाह वाह भाई वाह. जैसे हाथ उठाने में एवर रेडी हो गए ना, ऐसे त्याग करने में भी एवर रेडी रहे. तो दूसरी सीजन कौन सी सभा होगी? What's up?

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी चेक करना अपने राज के संस्कार, अभी से धारण करने ही है के नहीं करना, एक के दूसरा
2: समाना पड़े, किनारा करना पड़े, लेकिन
1: चाहता है एक बच्चा भी पीछे नहीं रह जाए, साथ चले। इसलिए एक तो अगर कोई नहीं बदलता है शुभ भावना रखी, और कोई नहीं बदलता है तो आप अपने को बदलो। उसने ये कहा, उसने ये किया, इसीलिए मुझे भी करना पड़ा, ये नहीं। इसीलिए भाव और भावना, आत्मक भाव, शुभ भावना, और ये शब्द, ये तो होता ही रहता है, ये तो करते ही है ना, चल ही रहा है ना, तो मैंने किया तो क्या हुआ? रोज देखता रहेगा, बाप दादा को देखने में देरी नहीं लगती। ठीक है ना? अच्छा,
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा भी देखते हैं कि सने बाप दादा से सब कहे, लेकिन सने के साथ शक्ति भी चाहिए। इसके लिए अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। बैठते हैं बाप दादा बैठने की मुबारक देते हैं, लेकिन जो बैठने के वायुमंडल शक्तिशाली चाहिए, कोई कैसे बैठता है कोई कैसे में। अगर आप फोटो निकालो ना तो आपको खुद लगेगा कि और कुछ होना चाहिए। जो बाप दादा ने ज्वालामुखी योग का उसके ऊपर अभी और गहरा अटेंशन देना, पुरुषार्थ करते हैं सभी, लेकिन पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द छोड़ो। अभी बाप दादा हर बच्चे को ये दो मास दिए, इसमें जितना अटेंशन देंगे तो अटेंशन के साथ बाप दादा भी एक्स

मन के मालिक। जिस मन को ऐसे चलाओ जैसे पांव और बांह को चलाते हो, जो चाहते हो वो करते हैं ना। अभी आप जाओ, यहाँ नहीं, यहाँ रखो, रख सकते हो ना। ऐसे माइंड कंट्रोल, जो चाहे वही मन संकल्प करे। रोज रात को रिजल्ट देखो। आज मन के रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक रही? अभी व्यर्थ को समाप्त जल्दी जल्दी करना चाहिए, तब समृद्ध बन वायुमंडल में समृद्ध बन की शक्ति फैलाओ। बाप दादा तो बच्चों का दुख दर्द पुकार सुन करके बच्चों द्वारा अभी जल्दी समापत्ति कराने चाहते। सुनाया ना, पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐड करो दीवार। करना ही है, करेंगे, देखेंगे, ये के नहीं चले।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कुमार भी कम नहीं है। कुमार अभी सुकुमार बन गए हैं और कुमारों के बिना सिर

0: teachers batao kumaron ki pinasin Churchill sa te teachers kumar ki fishista ipota chie kumar chotret sa kalab kari practical me last kyok sukumar ulta to karenge nahi sultai karenge to kumaro me dhrat sankalap ki gift hai चाहती है वो कर सकती है ये गिफ्ट है बाकी जो उसका नाम के हाथ में है लेकिन कुमार गवर्नमेंट भी चाहती है कि कुमारों का सुकुमारों का कुमार नहीं अभी बाप दादा की ये इशारा प्रैक्टिकल में नहीं लाया सारे विश्व के कुमारों का ग्रुप मधुबन में इकट्ठा हो और प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर यहाँ आवे कुमार अपना जलवा दिखा सकते कुमारों का ऐसा ग्रुप साथ ले जाओ कोई कहाँ का कोई कहाँ का कोई कहाँ का और डायरेक्ट निमंत्रण देवे सब देशों के और निमंत्रण देवे डेट फिक्स करें कुमारों में तो बाप दादा की बहुत बहुत बहुत शुभ उम्मीदें हैं और पूरन होनी है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Pena. Roupas.

सर्व शक्तियों का वरदान दिए, सर्व गुणों का खजाना दिए। खजाने को यूज करने से खजाना पड़ता है। खजाना है, सबके पास है, बाप दादा ने देखा है, हर एक के स्टॉक को भी देखता है। Shut up.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

कोई भी गरम करो।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने देखा कितना वे आने का कारण दे अपमान का मैं शब्द दे पान का मैं एक है मैं आत्मा हूँ ये मैं लेकिन दे पान के मैं शब्द अपमान का भी होता अपमान का भी होता और दिल शिकस्त का भी मैं नीचे गिराता तो बाप दादा आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का मैं इसको योग अग्नि में चलाओ अनेक मैं को चलाओ और एक मैं आत्मा हूं इस मैं शब्द को पका करो और बाकी मैं आज योग अग्नि में चला के जाओ अनेक मैं तो आज चलाने की होली मनाएंगे क्योंकि क्रोध का कारण तनाव बहुत होता है तो इस मैं को समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर संकल्प लो चलाना है क्योंकि ये भी तो पहुंचे ना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

مشکل نہیں. ایک ہی بات کا فالو کیا تو سہج just

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आराम का अर्थ है आराम फिर करना, आराम अर्थात बाप को याद करके फिर करना, वो आराम नहीं करना धनलपन।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

जब आत्माओं को सने से सम्मान देते हो, वास्तव में किसी को भी सम्मान देना नहीं है, सम्मान देना मान लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय सुतै बन जाता। जो भी बच्चा

सन्मान दिया और आप सो

0: சர்வகுண சம்பன்னா சேஜ் ஜெயதேவ்
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

बातें नहीं सोचो, ये कैसे होगा, ये क्या होगा।

0: बच्चे को ऐसा योग्य बच्चा जो बनेगा उसको सर्व प्राप्ति का वरदान भी देके आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

chiquis, la de

Push.

कुछ छोड़ना भी है।

Joke.

सदा रहे। ये विशेष ध्यान रखना, अपने दिल में कोई न कोई विशेष उमंग

prochaine.

संकल्पद्वारा छोड़ सकते।

ciao.

Chuchu, nature.

Peace.

उसके लिए बाप दादा फिशिंग

कोई बात छोड़ने चाहती है, लेकिन मैं तो बहुत बातें जो भी

agar sarasa swapan matra viyo. संकल्प से

3

संकल्प आज का अगर किया तो आज का दृढ़ संकल्प करने में आप हर एक को एक्स्ट्रा मदद मिलेगी।

kebab, Tata. Take this. Sankalap sab. Take it.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

chatted deep after the Nithika. Isme. Thread Sankalap Dwara. Majority pass. अशुद्ध भोजन का संकल्प किया और प्रैक्टिकल कर रहे हो ऐसे मन के लिए संकल्प करना है कि कभी भी किसी के पृथ्वी किसी सरकार

suicide.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी से आपके चेहरे पर फियरत की समापति और सदा स्मृति स्वरूप की झलक चेहरे और जलन में आनी चाहिए। ये माया के जो शब्द है ना, जैसे ये भाषणों द्वारा वाणी द्वारा सेवा का उमंग अच्छा रखा और सफलता भी पाई, ऐसे ही

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी आपस में जैसे सर्विस की मीटिंग करते हो, प्रॉब्लम हल करने के लिए करते हो ना, ऐसे ऐसे आपके टॉप की स्टेज सबसे

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ब्रह्मा बाप को देखा, कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दातापन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते, और प्यार की निशानी है कोई पांव का प्यार नहीं, लेकिन प्यार की निशानी कोई भी है।

सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सोन इकट्ठा इसीलिए किया जाता है कि एक दो के नजदीक होने के कारण एक दो को सहयोग देना सहज हो जाता है। तो ये भी सहयोगी बनना मेरी एरिया नहीं, सब मेरी है। आवश्यकता जहाँ है वो मेरा, चाहे सोन नाम अलग अलग है, लेकिन जहाँ आवश्यकता है, आवश्यकता के समय सहयोग देना ये महापुण्य है। अगर अपना पुण्य का खाता जमा करना है तो सहयोगी बनो और सेवा को और चार चांद लगाओ। ये बाप दादा को अचल, तो इस संगठन को बढ़ाते रहना, बढ़ाते रहेंगे ना, हाथ उठाओ, पढ़ेंगे ना, सभी ने उठाया। हम सब एक है, ये तो सेवा के कारण। कोई देख रेख हो सके इसके कारण सोन बने, बाकी एक ही है, एक ही रहेंगे, एक के है, एक ही रहेंगे।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बोल, में निर्माण बनो, बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा संपर्क में ऐसे नहीं तीन बातों में तो मैं निर्माण हूं, एक में कम हूं तो क्या हुआ, लेकिन वो एक कमी शारत करना नहीं पड़ते। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती। निर्माणता हर एक के मन से आपके प्रति
2: करने की विशेषता होती है। तो
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: तो सो जाओ, हर बात सामने लाओ, चाहे आत्मा चाहे परमात्मा चाहे चक्कर, सभी

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया, पता है क्या देखा? कभी किस बात की है तो यही दिखाई दिया कि एक सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना इसकी कमी है। जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता। बाप दादा ने सुनाया कि एक लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। लेकिन देखा क्या, लगाना फुल स्टॉप है लेकिन लग जाता है कमा। दूसरों की बातें याद करते ये क्यों होता, ये क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लगा जाता तो फुल स्टॉप नहीं लगता लेकिन कमा आश्चर्य की निशानी। और क्यों क्वेश्चन कि क्यों लग जाती, तो इसको चेक करना। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी इसलिए बाप दादा होमवर्क दे रहे हैं कि खास

0: stop. Seeker me. Lagane ka. Bar bar. Abhyas karo. Abhi. Fast tivar pusharat karo. Abhi dhila dhala pusharat. सफलता नहीं दिला सके।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अब मानो कई लोभ किए, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो, दोनों में राय लोभ माया लाने का फल पुरुषार्थ करती है। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय होती सेवादारी सब में अच्छा, लेकिन जब आगे बढ़ती है तो ये राय लोभ आता कि मैं इतना कुछ करता हूं, सब रूप से मदद करूं, धन से और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाना, फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करती। ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है, अगर मानो ये भी नहीं आवे तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? अच्छा नाम ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ। वो अपमान के रूप में आ गया, यहाँ बहुत काम करके आए और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, पानी का ग्लास भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में या अपने काम बिजी रहे तो ये भी होता है कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं, तो करना क्या है, करना या ना करना एक ही बात है। उसका पाना है। तो जहां एक विकार होता है ना, वहां उनके चार साथी छिपे हुए रूप में होते हैं। और ईंट को आपने चांस दे दिया तो वो छुपे हुए जो है वो भी समय पर मान अपना चांस लेते हैं। पहली अवस्था बड़ी अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हुआ, माया जोर गेट से आ गई, ये पता ये नहीं को पता नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: विश्व कल्याणकारी की स्टेज है सदा बेहद की वृद्धियों।

0: Dime, Sarapi, que si atma que preta, negito ya, fierat, pavna.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

我救过

0: और परिवार को देख तो लिया। बाप दादा समझते हैं कि आप चाहिए कि अगर दिल से जाओ तो लास्ट सो फास्ट फास्ट सो आगे आ सकते। सब आत्माओं का प्यार सहयोगी बनेंगे, सनेह देंगे और आपको आगे बनाएंगे, चांस देंगे। इसलिए आज आने वालों को
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सब वाह वाह होना।

सदा रहेंगे या अभी? सदा सदा बाबा, बाप सदा बाबा न तैरना, तब तो याद करते।

they came.

शब्द बोलना नहीं, ये सभा में हाथ उठाया ये बोलना नहीं।

farla. Tu chiamo. Kuch bhi baat ho jaye.

उसको पकड़ लेते हो। कोई बात ठहरती नहीं है, चली जाती है, आप क्यों पकड़ लेते हो? तो कल से रोज़

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज का दिन प्यार का दिन है, तो प्यार में तो सबसे समझदार तो क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जो नहीं करना है वो नहीं कर लो बस। बाप दादा अभी विश्व परिवर्तक बनने के लिए हर एक को निर्विघ्न बनना और साथियों को बनाना विश्व परिवर्तकों, तो एक साथियों को बनाना क्या मुश्किल। तो हर एक ध्यान रखना हमको अपना वायुमंडल, विश्व को बनाने वाले हो। बाप दादा तो छोटा सा काम दे रहे हैं। संकल्प करते हो, हाथ उठाओ संकल्प करने वाले। खुशखबरी सुनेंगे ना, सुनेंगे सुनेंगे, इसमें याद रहो। अपने नजदीक वाले साथियों को छोटा सा काम देते हैं, सभी को नहीं कहते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप

Joker.

अपने स्वमान

स्वमान कितना बड़ा है। चले गए अनादि स्वरूप में।

जैसे आकाश में पिया। कोई कोई सितारा विशेष चमकता है।

Man. Is the dose a deal? Sir.

Is

zasorów, tyko.

kitten är sån där.

सर्वप्राप्ति स्वरूप।

love.

कौन सा योगा गया।

अपने पूछ स्वरूप को देख रहे हो।

स्वमान देखा।

चक्कर लगा रहे हो, पीछे वाले चक्कर लगा रहे हो, हाथ उठाओ जल्द। देखो अपना स्वमान, क्योंकि स्वराज है।

七。

分。

इसलिए

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

end.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

पर्सनालिटी और रियलिटी कितनी ऊंची है, अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती तो कितने चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती। उस चमक की रियलिटी पर्सनल बड़ी है, दिखाई देती है। और पाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो, समीप रहते हो, जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं ना, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष पाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हैं। परम भी आप समीप है बाप के, और फिर आदि सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनालिटी रियलिटी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में पर्सनलिटी कोई की है जो आपकी सतयुग में देव आत्माओं की सामने आ रहा है ना, अपना देव स्वरूप आ रहा है कि पता नहीं हम बनेंगे या नहीं, पक्का है ना, पक्का सामने लाओ और देखो, ये इस तरफ वाले ठीक है, पर्सनालिटी आ गई सामने, अच्छा या वाले आ गई पर्सनालिटी सामने, कितने रियलिटी पर्सनलिटी वाली हो जाती। जीव के फल फूल सब पर्सनलिटी वाली रायल। अच्छा फिर आओ नीचे तो आप अपना पूज्य रूप देखे, आपकी पूजा होती है डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे, आप लोग बने हैं, देवियां बनी हो, देवताएं बने हो, अच्छा सूंड वाला नहीं, पूछ वाला नहीं, देवियां भी हो, काली रूप नहीं, स्वरूप की
4 फुट 5 फुट की, और मंदिर कितना बड़ा बनाते हैं। ये रॉयल्टी और पर्सनालिटी, आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे राजा हो, लेकिन धूप में बेचारे का बोता बना के रख देंगे। क्या भी होता रहे, स्वरूप की पर्सनालिटी कितनी बढ़िया है ना, बढ़िया कुमारियां बैठी है ना। रॉयल्टी है ना आपकी, फिर अंत में संगम युग में भी पर्सनालिटी रॉयल्टी कौन सी।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

लगा।

समझने से।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Bye.

0: सबसे समृद्धि नहीं, समृद्धि के साथ साथ सर्व समृद्धियां बच्चों को वरदान में प्राप्त।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हिम्मत कम तो नहीं होती। हिम्मत कम होती है तो बाप की मदद का भी अनुभव नहीं होता। बाप मदद देता है लेकिन कैच नहीं कर पाते, फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए सदा अपने को देखो, हिम्मत बढ़ाओ। कोई ना कोई ऐसी बात बुद्धि में रखो जिससे हिम्मत बढ़ती रहे। जितनी हिम्मत बढ़ेगी ना तो हिम्मत के आगे और बातें आने भी कम हो जाएगी।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बात भी कही दूसरों

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज बाप दादा किसानों के मालिक बच्चों के इसलिए

0: सदा करते चलो। इतने अटेंशन से अलबेले रूप से चेकिंग नहीं, बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, ये चेकिंग तो हुई, लेकिन
1: पूर्वक नहीं, कभी कभी

Listening.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ये आशी है दृष्टि लेना भगवान से, समर्पित वालों की ये आशी है।
2: लेकिन दृष्टि लेनी है तो दृष्टि में बाप दादा को सदा रखना है, ऐसे ही दृष्टि नहीं लेनी है। दृष्टि लेना अर्थात दृष्टि में बाप को समान, ऐसी दृष्टि लेना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: एक बाप दादा को अल्लापेलापन नहीं अच्छा लगता, और दूसरा दिल शिकस्त होना नहीं अच्छा। कुछ भी हो जाए, दिल बड़ी रखो, दिल शिकस्त छोटी दिल होती है, और दिल खुश बड़ी दिल होती है। दिल शिकस्त नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना। उमंग उत्साह में सदा उड़ती।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सबसे अच्छे थे अच्छा रंग

Yeah.

Shit.

कुछ आत्माएं बन गई। ये अविनाशी संघ का रंग प्यारा लगता है ना। Again.

kan sarang lagaya. Oh.

0: mal, get off of me. Atma bhi pavitra banti. Aur atma ke saath sharir bhi pavitra banta. Itni shreshth pavitrata bani kaise
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा टीचर साहब, उठो। अच्छा टीचर साहब भी स्वयं भी सफल करो और सफल करो सेवा में वृद्धि होना, अर्थात खजानों को सफल किया और करें तो इस वर्ष इस स्लोगन को प्रैक्टिकल में लाना तो सुधई वृद्धि होती जाए। हिम्मत दिलाओ, बाप दादा ने देखा है कोई कोई स्थान में हिम्मत कम दिलाने की शक्ति है। हिम्मत दिलाओ, हर कार्य में मनसा में भी वाचा में भी संबंध संपर्क में भी कर्म में भी हिम्मत दिलाओ। टीचर्स की सीटी है हिम्मत में रहना और हिम्मत दिलाना, क्यों? क्योंकि टीचर्स को जो बाप की मुरली सुनाने की चांस मिला है और तख्त मिला है, ये एक्स्ट्रा मदद है। तो हिम्मत और खुलास दिलाओ, सारा क्लास रूहानी गिरा हुआ गुलाब दिखाई दे। सुना टीचर्स ने, खुलास में लाओ क्लास।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: संकल्प करते हो लेकिन बाद में क्या होता है? संकल्प क्यों कमजोर हो जाती है जब चाहते भी हो? क्योंकि बाप से प्यार बहुत है। बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है, और प्यार में सभी हाथ उठाते हैं कि 100% तो क्या, लेकिन 100% से भी ज्यादा है। और बाप भी मानते हैं प्यार में सब पास है, लेकिन क्या है? लेकिन है कि नहीं है? लेकिन आते हैं बीच में लेकिन आ जाते हैं, आ जाते हैं। ना नहीं करते हैं तो हाँ है। बाप दादा ने एक बात नोट की है, मेजॉरिटी प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। सोचो वो एक शब्द क्या है टीचर्स, एक शब्द क्या है? बोलो टीचर्स, क्या है? पांडव बोलो, क्या है? एक शब्द है, आ गया, याद तो आ गया ना? आ गया याद, आ गया। अच्छा, एक शब्द है अपमान के रूप में भी मैं आते हैं, और कमजोर करने में भी मैं आते हैं। मैंने जो किया, मैंने जो समझा, वो ही राइट है, वही होना चाहिए। और जब होता नहीं है ये अपमान का, मैं जब पूरा नहीं होता है तो फिर दिल शिकस्त में भी आता है। मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियसनेस काम में बदल जाए, मैं स्वमान भी याद दिलाते हैं, और मैं कष्ट भी करता है, और मैं दिल खुश भी करता है। जिसका अपमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? वो अपमान अपना सहन नहीं कर सकेगा। अपमान अपमान सहन नहीं करे। शराबी कोई कहेगा ना, ये ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ तो अपमान लगेगा। ये अपमान

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बेटी करवा ले, अब ऐसी तैयारी कराओ करो जो सभी जैसे बाप दादा ने कहा, बेफिक्र बादशाह फिक्र नहीं तो बीमारी भी नहीं। खुश रहे सभी, खुशी नहीं कमाए, ऐसी दवाई निकालो जो कभी भी कोई थोड़ा सा तन से या मन से ना खुश हो दवाई

0: सभी के मन में मेरा बाबा बिठा दो तो ये दवाई हो जाए। अच्छा बैठ जाओ, बहुत अच्छा सेवा कर रही है, करते चलो। विजय तो आपके साथ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन आर्डर करो स्वीट साइलेंस तो अनुभव करो आर्डर करने से अधिकारी बनने से स्थित हो जाओ।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मजबूत हो गई हो ना।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: दोनों को भी वाणी

Tipp mir was.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वो है संगम युग के समय का खजाना।
4: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

gente.

Mi arpa chiqui.

在隔壁给的那边不见那个爸爸的What's your

Oh.

एक बच्चे

Deus.

0: అధికాత్మకు.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

हार खाने वाले

Master Sarveshaktivan.

0: esa verdad.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से अलचल में आते हैं, उसका कारण सिर्फ तीन बातें मुख्य है, वही तीन बातें बिना समस्या या परिस्थिति बन के आती, वो तीन बातें क्या है? अशुभ वा व्यर्थ सोचना, अशुभ वा व्यर्थ बोलना और अशुभ वा व्यर्थ करना। सोचना, बोलना और करना अभी विक्रम कम होती है लेकिन कम। व्यर्थ ज्यादा होते हिला देता है और पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है। और किसका रिजल्ट में देखा तो बोल और कर्म में नहीं आता है, लेकिन सोचने में बहुत आता, उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है, जो समय बनाने का है वो सोचने में बीत जाता है। तो बाप दादा आज इनकी गिफ्ट सभी से देने चाहते त्यारे है। सभी ने ये दे दिया, वापस नहीं लेना। ये नहीं कहना मुख से निकल गया ना, क्या करे, संकल्प का बटन लगा दो मुख पर, तेरे संकल्प का बटन तो है ना, क्यों पाप दादा को बच्चों से प्यार रहना तो प्यार की निशानी है, प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते। बाप दादा तो उस समय ये सोचते कि बाप दादा साकार में जाके इनको कुछ बोले, लेकिन अब तो आकार निराकारी है। बिल्कुल सभी समाप्त हो जाए, मेहनत को खत्म करे नहीं सोचो, सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मेहनत आप ही छूट जाए, छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की कोशिश करो, झूलने की कोशिश। बाप को भी बच्चों पर फीत है, लेकिन पता नहीं क्या कोई किनारे कर लेते हो, जो बाप को भी पता नहीं पड़ता कैसे किनारा कर लिया। छाया के अंदर बैठे रहो, ब्रह्मांड जीवन का अर्थ ही है झूलना, माया में नहीं। माया भी झूला झुलाती है, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। आप ही अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूलों में झूलो, प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं अनगिनत, झूले से हम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जिसको भी जो देखे ना, ऐसे लगे ये कौन मेरे सामने आ गए। देख देख के खुश होता नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अब बाप दादा भी समझते हैं, एक विचार कर, अलग अलग विचार तो होता ही, लेकिन विचार को मिलाना वो अपने हाथ में होता। तो बाप दादा भी आप निमित बने हुए पांडवों के, ये कमाल देखने चाहते। विचार भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन मिलाना भी होता। तो अभी आप तीनों में यही कमाल, तीन नहीं लेकिन तीनों में एक है, बाकी तो सब अच्छे निमित्तों के चला रहे हैं।
3: बाबा याद प्यार देंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yeah.

lot

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

姐。Made up게 쓰다서

सदा विजयी बनना, जहां भगवान साथ है वहां विजयी बनना क्या मुश्किल है।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पवित्र आत्मा को तीन विशेष वरदान मिलते हैं, एक स्वयं को वरदान देता जो सहज पाप का प्यारा बन जाता, वरदाता पाप के नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता। इसलिए पाप की दुआएं स्वतः प्राप्त होती और सदा प्राप्त होती। तीसरा, जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं और द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तीनों की दुआओं से सदा
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

muerte, güey.

जैसे जाओ वैसे अभी अभी

Mira.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: इन्होंने 5 दिन फुल स्टॉप लगाने की पट्टी की और पांच ही दिन लगातार कोई भी मिस नहीं हुआ। आज शुरू भी की और अंत तक आपके सामने, तो ये पुरुषार्थ अच्छा किया। ऐसे आप लोग भी ग्रुप ग्रुप बना के अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करना। चलो तो जाने हो सेंटर पर कोई एक सखी को साथ बना दो और अपने बड़ी को सुना दो, तो क्या है पट्टी करेंगे ना, विशेष नियम बनाएंगे तो उसका मदद मिलेगी। तो बाप दादा को अच्छा लगा। अभी सहज पुरुषार्थ हो गया ना, अभी वहां जाके भूल नहीं जाना, बातों में नहीं आ जाना, फुल स्टॉप में नंबर 1 लेना।
2: दूसरों को कराएंगे,
1: कराएंगे भी और अपना अनुभव सुना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी बंधन में जाना न जाना अनुभव नहीं रहो, जाना है आवश्यक है तो शरीर भी साथ देगा, चल सकता है शरीर। कभी तो एकदम खराब होता है ना, वो बात दूसरी, बाकी चल सकता है तो सेवा से खुशी होती। ये भी दवाई है, कितने खुश होते हैं तो सबकी खुशी की खुराक मिलती।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जिस भी सेवा स्थान का सेवा का वृद्धि होती है और निर्विघ्न होती है, उसका कारण क्या होता है जानते हैं? पालना। कई सेंटर्स में वीआईपी की सेवा बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन स्टूडेंट की पालना कम करते हैं, इसीलिए स्टूडेंट पढ़ते नहीं है और स्टूडेंट रेगुलर सेवा के उमंग उत्साह में नहीं रहे। क्लास करेंगे, जो कहेंगे वो करेंगे, लेकिन अपने उमंग उत्साह में नहीं है। तो ये रिजल्ट है पालना की। मुबारक।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम। बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बन जाऊंगा। अच्छा ही।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: टीचर को क्या चाहिए? सेंट्रल अच्छा हो, कपड़े बोले कैसे भी हो, लेकिन सेंट्रल थोड़ा रहने लायक तो अच्छा। और जो साथी है वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, पापा की प्रणाली अच्छी हो, अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल रखती है थोड़ी। फिर समझती है कि क्या करें, ये मदद करता ना, अभी वो चला गया, मदद कर चिंगिया सूता वह पाप है। तो उस समय कौन दिखाई देते चिंगिया सूया पाप? हमारी पहचान नहीं है, जिसकी कैचिंग पावर और वाणी में किसमें मीठा होता है और किसमें स्पष्टता होती है। बोलेंगे एक बात, आप भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, लेकिन योग की बात छोड़ो, सिर्फ बोल में भी किसमें मिठास होता है, किसमें स्पष्टता होती है, किसमें कैचिंग पावर होती है। तो यहाँ के वहाँ के मिसाल वगैरह कैच करके सुनाती है। इसीलिए उनका नाम भी हो जाता है, कौन चाहिए फलानी चाहिए, कौन अभी फलानी है, चाहे योग में भले कच्ची भी हो, लेकिन इस पर नंबर फाइनल नहीं होने। जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो ये नहीं दियोंगा कि इसने कितने भाषण किए या इसने कितने स्टूडेंट बनाए, सेंटर बनाए, योग्य कितनों को बनाए। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं, लेकिन आत्माओं को योग्य कितनों को बनाए। नाम हो गया दी सेंटर की इंचार्ज और तीस में से ठीक है तो क्या हुआ? फायदा क्या? सिर्फ यह नाम हुआ, सिर्फ नाम होता है कि फलानी के तीस सेवा केंद्र, लेकिन नंबर इसे नहीं मिले। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे उसी प्रमाण मिलेंगे। इसीलिए ये भी चाहिए चाहिए कदम योग नहीं लगे। रोज ही देखते रहेंगे कि फलानी जगह हुआ, मेरे को फिर भी नहीं मिला। अभी देखो परसों यहाँ हुआ, कल वहाँ हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेंगी। तो मुख्य बात है जो यथारत निश्चय है उसको पक्का करो। कहने में तो कह देती हूँ मैं आत्मा, और पाप सर्वशक्तिवान है, लेकिन प्रैक्टिकल में
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हाथ तो बहुत सहज उठाते हैं बाबा को पता है, हाथ उठवाएंगे तो बहुत प्रकार के हाथ उठेंगे, लेकिन फिर भी बाप दादा कहते हैं जिस चीकिंग से आप हाथ उठाने के लिए तैयार है, बाप दादा को पता है कितने तैयार है कौन तैयार है, अभी भी और अंतर्मुखी सूक्ष्म चीकिंग करो। अच्छा, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन जितना सुख का खाता जमा होना चाहिए

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ऐसे मत वालों को मुबारक देते हैं कि हिम्मत आपकी मदद

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा सदा कहते हैं कि फॉरेनर्स इस जन्म के फॉरेनर्स है, लेकिन अनेक जन्म के ब्राह्मण परिवार के हैं। अगर आप लोग विदेशी नहीं बनते तो विदेश के बिना बिना देशों की सेवा कैसे होती? अगर आप विदेश के रूप में नहीं आते तो बाप दादा को सब देशों की भाषा का या क्लास रखने पड़ते, तैयार करने पड़ते। तो आप लोग जो बिना बिना देश में गए हो वो सेवा के प्रत गए, समझा? समझ में आया क्यों गए हो? ओरिजिनल आप ब्राह्मण आत्मा हो, विदेशी आत्मा नहीं। बिना बिना विश्व की सेवा के लिए देखो, भारत में भी हर भाषा के बच्चे आए हैं और सेवा कर रहे। नहीं तो पहले एक ही ग्रुप था, सिंध का ग्रुप, और धीरे धीरे बिना बिना देश का, चाहे भारत के चाहे विदेश के, आते रहे और पढ़ते रहे। ये भी ड्रामा में बना हुआ खेल। वैसे भी पहले जड़ में थोड़ी होती है, फिर धीरे धीरे तना और शाखें निकलती, तो फाउंडेशन बना सिंध के देश के निमित्त, फिर धीरे धीरे फिर क्या बढ़ता गया, भाषाएं और देश की शाखाएं। आप शाखाओं में नहीं हो, आप तो बाप के साथ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे योग भी दे सकते हो। सकाश दे सकते

और वो

सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में कुछ।

0: शरारत कर रही है। जमा का शरारत आप ही कर सकते हैं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेगी, ये गारंटी है, लेकिन किसके किसके मददगार जो हिम्मत का पहले पांव आगे कर दे, फिर बाप मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद कर दे। हिम्मत का पांव उठाने और श्रम को बाबा आप कर लो ना, बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा ठीक है, पहले पांव तो रखो, एक पांव भी नहीं रखेंगे तो क्या कैसे होगा। इसलिए इस वर्ष पे हर समय मजबूत है, बाप को कहने के पहले ये चेक करो, हिम्मत का पांव बनाया और मदद नहीं मिले ये असंभव है। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पांव भरा, इसीलिए गया हुआ है। पहला शब्द क्या आता है, हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप, इसको उल्टा नहीं करो, मदद दे बाप और फिर हिम्मत बचो। मुस्कुराते रहते हैं, वाह मेरे बच्चे लाडले, वाह निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुना मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: खुश है किस बात पर?

0: टेंशन बढ़ा है, इसलिए अटेंशन बढ़ा है तो टेंशन संस्कारों का कम होता जाएगा। बाप दादा ने पहले भी कहा, जब भी टेंशन आवे ना ए लगा दो, बस ऐड कर दो ए अटेंशन। चलना तो सबको आई, ये तो वायदा है ही पक्का, साथ चलेंगे साथ राज करेंगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आवश्यक साधन सबके पास।

someone. Fishes.

0: společný sad nám jedeme vani. Hotelový.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

bigote se va a caplar en panate. Ferpi. Just

Rabbit.

Yes!

Okay.

要是这样It's got sadness.

करते जाएंगे। और सेकंड में

Sim.

उसमें जितने रिजल्ट चाहते हो उसे अधिक

Chopi se va a

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सब दादियों को देखे खुश होते हैं, क्योंकि दादियों ने निस्वार्थ सेवा की है।
2: साक्षात्कार होना है।
1: कश्ती पर आ गए हमको उठाने के लिए। एक दो को देखो ये फरिश्ते स्वरूप में, ये फलाना है, ये फलाना है, नहीं फरिश्ता है। ठीक है, दादियों से ये सीखो, शुभ भावना शुभ कामना दो। स्टॉक है आपके पास, लेकिन देने में दाता कम बनते हो। नेगेटिव न देखो, न सुनो, न बोलो, न सोचो। गुस्सा के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अच्छा है ना, दादियाँ स्टेज पर आती है, सबके चेहरे मुस्कुराने लगे थे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने रिजल्ट देखी सभी के कर्मों के गति को चेक किया, पुरुषार्थ के गति को चेक किया, खजाने जमा का खाता चेक किया, तो रिजल्ट में क्या देगा? जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न है, जितना सोचते हो जमा किया होता है जमा, लेकिन परसेंटेज थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं। जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क है, इसलिए बाप दादा अभी एक एक बात पर दृढ़ संकल्प कराते, क्रोध पर कराया, लेकिन मन से भी किसके प्रेत हलचल नहीं हो, क्यों क्या नहीं हो, मुख से कंट्रोल किया है, कोई कोई ने अच्छा किया, लेकिन मन से थोड़ा

Baby.

0: baby. Fakur ke bajaye fikr aata hai. To andar sirf tere ke bajaye mera man se fikr aata. सभी का लक्ष्य क्या प्रैक्टिकल है कि फिक्र दे दिया या बीच बीच में फकुर छोड़ के फिक्र पे आ जाते आते फिक्र आता है कि बेफिक्री रहते.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो उसमें संदेश तो मिलता है, अनुभव करके जाए कुछ
2: समस्याओं में, ताजियों को भी समय

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: फॉलो करना तो सहज है ना, जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, ये समाप्त हो जाता और अनुभव है सब। उस समान स्थिति बनाने का साधन यही सहज है और ये अभ्यास
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: discover beauty. ये भी बच्चों को कहती है, जैसे साकार में मिलने के लिए दौड़ दौड़ कराते हो, ऐसे दीवार पर शरारत करो। इसमें सोचते हो ना, सबसे आगे थे आगे नंबर मिले, सबको तो मिलता नहीं है यहाँ, साकारी दुनिया है ना, साकारी दुनिया के नियम रखने ही पड़ते हैं। तो सबसे सभी बहने तो पीछे नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के नैनो में बैठे हो। नोरे रतनो, सुना पीछे वालों ने, दूर नहीं हो समीप, शरीर पीछे बैठी है लेकिन आत्मा सबसे समीप है। और बाप दादा तो सबसे ज्यादा नजदीक वालों को इस स्थूल नैनो से देखने का चांस है, और पीछे वालों को इन नैनो से नजदीक देखने का चांस नहीं है, इसलिए बाप दादा नैनो में संभाले थे। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं तो बचता है और लाइट शुरू हो जाती है। बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़े खड़े तक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा प्यार का सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर लेते हैं, टांगों में मसाज हो जाते। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप परमात्मा के पीड़ित

चमकते रहते हैं। और भी आत्माएं हैं लेकिन आप सितारों की चमक Thank you।

sabah dikar.

Israeliti. Kasu.

Chama.

just

Bağırma.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

अपने पन का एहसास, अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार, युग युग में ना छूटे बाबा बस तेरा सा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: पदम पदम

Af geht es weh. Schöpfe सभी को

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah.

Ese.

lernen.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वर्तमान समय और स्वयं

es algo que

So.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा को बच्चों का पुकारना, चिल्लाना,

साथ में करो कि चलते फिरते अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। ये संकल्प ले सकते हो, जैसे ये संकल्प लिया तो संस्कार को समाप्त करेंगे सदा के लिए। सदा के लिए लिए है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर पाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा जरूर

fartarse, raya

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मैं परम धाम निवासी

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहते, एक शब्द है सफल करो, सफल बनो, जो भी खजाने
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

ये अखियाँ थक गई पंख निहार आ जा रे।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

me diga que me llame diga Christine.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जो भी आवे खुशी जरूर ले जाए, क्योंकि खुशी हर मनुष्य को आवश्यक चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते। तो टीचर्स बना फीचर्स द्वारा भी सेवा करें। अभी आगे चल करके आपका चेहरा और चलन ये सेवा ज्यादा करेगा, क्योंकि जैसे समय ना सिखाएगा तो समय कम मिलेगा, लेकिन चेहरा बढ़ेगी, कुछ मिले। इसके लिए टीचर्स को सदा ऐसे एवर रेडी रहना चाहिए, जो कोई आवे वो कम से कम कुछ लेके ही जाए। चेहरे और जलन द्वारा भी कुछ न कुछ लेके जाए। दादा के बच्चे हो ना, बाप दादा तो टीचर्स को देख के बहुत खुश होते, दिल ही दिल में गुण गाते हैं, वाह टीचर्स वाह। सेवा तो करते ही है, और अपने रिजल्ट रात को भी देखते होंगे कि आज की सेवा क्या हुई। अपना चार्ट तो आप ही देखते, जो लक्ष्य रखा सेवा का वो हुआ, अगर नहीं हुआ काटने अकाटने तो दूसरे दिन डबल करो, खाली नहीं छोड़ो। क्योंकि टीचर्स बनाने में दादा के बच्चे दादा, तो बाप दादा तो खुश होते हैं, चाहे छोटे सेंटर की है चाहे बड़े सेंटर की है, लेकिन त्याग करके सेवा स्थान पर आना ये भी हिम्मत है ना। तो बाप दादा आपके हिम्मत पर तो खुश है, अब और साथी बनाओ और भी टीचर्स निकालो, क्योंकि सेवा बढ़नी है। अभी थोड़ा हंगामा होगा और सब उत्कंठा यहाँ से आपके आगे आएंगे। सर्विस बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।